0: एक गाल में को विचाले याद आ गए कि परदेश ही जेरे वेले पियो माँ होवे बहन बिरा या कोई भी होवे तो वो डाढ़े याद आंदे हैं उन्हों को केरियाँ केरियाँ उम्मीद होने आज जरा ऊंद ते भी गुफ्तगु करे सूँ लेकिन एक काल गिनने हैं लेकिन कौन सा को केरी जातू याद करें तो पिया अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मेरे सोना ते मिठे बिरा को सराय के प्रोग्राम फुला बरी घेर दी विच सत बिस्मिल्लाह अच्छा मेरे नाल तो सराय की अले सो मैं को पता तो सराय की आंदी है अच्छा कितु गाल करें दे पेवे के आपने शहर का ना तो दसो ना अच्छा ना अपना दसो के ना है तुरा वकास वजीर साहब वजीरिस्तान तू गाल करें दे पेवे सही अच्छा टांग ही चू गाल करें दे पे वे सराय की प्रोग्राम कुछ मजा करें दे तुआ को के नहीं मजा करेंदा है नाश्ता कीता वे फजर ले चाशा पीती है अच्छा अच्छा अच्छा माशाल्लाह बात तो ये वजह को तुम्हारी आवाज बड़ी सोहनी आवाज आंदी पई मैं के लगदा इवें जी में एकडू पिराठे अंडे ते चाह दा प्याला तू सा पीता होया है अच्छा सा को कोई शेर सुने सो पश्तो दी विच वारे सजन जरिया सारे सारे पश्तून भिराइनो सुन दे पैन कोई शेर कोई कैसे अगर तू सा टपा सुना रहे हो जी टपा सुना रहे हो बिल्कुल ऐसा सुनने वास्ते तैयार है ते क्या कुछ सलाम दुआ दे सो सही कोई सजन है तुहरा वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम
1: बस ओके ओके
0: ओके जी अल्लाह हाफिज जी सही पश्तून बिरा जरे वेले सरह की गाल करें ना सही गाल है मैं को डाढ़ा मजा आंदा है गुफ्तगु करें दे ते लहजा उन्होंने जरा हुंदा डाढ़ा सोना हुंदा मैं सारे पश्तून बिरावां दी मोहब्बत दा थोरे ता के सरह के प्रोग्राम दे विच तुसा शामिल थींदे वे एक दूजा कालर सारे नाल लाइन ते देखन कोनी टाइम गुफ्तगु

ओके जी भाई, हंसी तिलियम और दखसन में वादे रह सका। ओके जी दखसन वादे सासुड़ी डेर मुबारक शशी भाई जमा सिस्टर रागली दा आगा होम प्रोग्राम और अखाम फाइजा नूर ने में देखा और ना दुनिया से ना दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है और खुदा को याद करने से मी फाइका। ओके जी फाइका, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपका भी घर आबाद कर ले जी। जरिया मरवत कोटकट नाइस ना ब्यूटी क्रीम जिंदाबाद, थैंक यू जी फाइंदाबाद तासु। मतलब ये देखिए आप सिर्फ क्या लिखा है यार। सना फ्राम वाना भाई था सुन लैंग्वेज द मीज पूरी डेर ग्रांडे। ओके जी बिल्कुल ना जमुंग वाले डेर जान दे सासु वाले डेर ग्रांडे मुशवान दे अबर हाल सासु डेर साथ मने को डेर साथ शुक्रिया दा कुम सासु कॉल सुमर अरवान दी आज सासु पैगामात कुमर अरवान दी नु बिल्कुल जी के तासु तो हम द स्किन से मसली में साइल हुई आज हमेशा तो हम आज तासु बिल्कुल जमुंग दी सना कॉस्मेटिक पाकिस्तान इंतहाब को लिशी के सासु स्किन से मसली में साइल हुई। आदिस हमारी जितनी भी उर्दू सुनने वाले उससे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग हमारी जना कॉस्मेटिक पाकिस्तान का इंतहाब कर लें अपने लिए अपनी स्किन के लिए, क्योंकि ये जो स्किन होती है ये बाल होते जो ये बिल्कुल तजुर्बों की तजुर्बे का जगह नहीं है कि इस पे आप लोग तजुर्बे कर लें, इस पे आप लोग गैर मायार प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह एक दफा लाजी हमारी जना कॉस्मेटिक पाकिस्तान का आप लोग इंतहाब कर लें, इस्तेमाल कर लें, यूज कर लें। हमारी क्रीम्स में दो किस्म की क्रीम अवेलेबल है जना कॉस्मेटिक पाकिस्तान, फार्मूला ब्यूटी क्रीम और पोर इन वन कम्प्लीट गोली ब्यूटी क्रीम। पोर इन वन कम्प्लीट में क्योंकि आपको पोर चीजें यानी चार चीजें जो मिल जाती है इसमें, एक ब्यूटी सोप, विटामिन सी कैप्सूल, ब्यूटी सीरम और ब्यूटी क्रीम, आपने ये तीनों को मिक्स करना है अच्छी तरीके से और साबुन ने आपने बिल्कुल जी खाना नहीं है, आप लोगों ने इस्तेमाल कर लेना है अपनी स्किन पे। वो सबसे छोटा साबुन है लेकिन कमाल का साबुन है, जब वो आप लोग इस्तेमाल करते हो तो आपको आपकी स्किन की जो नमी है वो और भी हाइड्रेट रखता है क्रीम के लिए, वो मुफीद बनाता है। जब आप क्रीम लगाते हो तो रिजल्ट फिर और भी चांद चांद लगाता है, तो आप लोग इंतजाम कर सकते हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि स्ट्रियासी खालिस प्रोडक्ट है और इसमें कोलिजन फार्मूला शामिल है। अगर किसी ने भी अपनी प्रोडक्ट में कोलिजन फार्मूला को साबित कर लिया तो जो भी चाहते हैं मैं इंशाल्लाह उसको दूंगा, लेकिन आप लोग जब इंतजाम कर लोगे आप लोग हमेशा इस ना कॉस्मेटिक पाकिस्तान का इंतजाम कर ले इंशाल्लाह एक दफा लाजमी इंतहाब कर ले, दूसरी दफा आप खुद जाएंगे रिजल्ट को देखे जाएंगे इंशाल्लाह। खबर हुकूमा आज तासु यूजल इस्तेमाल के यूजल इस्तेमाल की द्वेम जल बतासु पखपले बानी बसे जांद पर बदे इसना कॉस्मेटिक पाकिस्तान दा प्रोडक्ट आवडे इस्तेमाल होई बा यूज कोई बे इंशाल्लाह आतासु बर रिजल्ट मिलावी की तासु मखबानी दानी दागुन तिरसरी दस्त दुगुरलान तोरे हलके तासु रागे ने परेशान द डार्क स्पॉट डार्क सर्कल आस्तासु वजूद बानी मौजूद इस तासु पर आदौजुदा से बॉडी पार्ट्स ते चगड़ीर से तोर दे दागे ने तासु परेशान है या तासु चिकम दे एल्बो से अक्सर पंक्चर हुई तासु चिकम दे कपड़े वाचू दातूर एल्बो पकड़ी साथ बदकारी के दाल टोर लास्पिन हुई दातूर एल्बो चिकम दे दाडू की वाले जेदा अक्सर तूर भी दी दारा जमंग दोरिवन कम्प्लीट गोली ब्यूटी क्रीम इंतहाब के इनशाला तासु मुतमाइन है 110% में तासु मंग प्रोडक्ट में मुतमाइन है खुश इंतहाब तासु मान दे आया तासु इंतहाब को उलवाड़ी कने वाड़ी ब्याह तास्ता सिक्स में मालूम पकार हुई। अगर आप लोगों को एड्रेस के बारे में पूछना है मैं तो क्योंकि हर प्रोग्राम में सबके रेडियो के एड्रेस शामिल नहीं कर सकता, फिर भी आप लोगों को इंतजार रहती है कि आप लोग इंतजार करते हो एड्रेस का, तो आप लोग 0353 50 19 020 पाने तासु राब्ता। ओके जी आप लोग इस नंबर पे राब्ता कर रहे इनसे पूछे अपने इलाके के एड्रेस हवाले से इंशाल्लाह जुबेर साहब आपको बताएगा 0353 50 19 020 एड्रेस पकार हुई

0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क।
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
4: और मुख्तलिफ के पीके के इलाकों में हर छोटी बड़ी शॉप पर दस्तियाब है, स्पेशली उन बहन भाइयों के लिए जिनके चेहरे पर एक्नी है और आयल का मसला है। मजीद मालूमात के लिए 0342-311-2292 पर कॉल

0: अच्छा, इसके अलावा एक इंतहाई और अहम बात जो आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है, ये चीज़ हमारे सामने आ रही है और हम तकरीबन हर रोज़ न्यूज़ में सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, वो चूंकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है, लोगों का आपस में इंट्रैक्शन ज़्यादा हो गया है, उसकी वजह से कुछ बीमारियों ने जन्म लिया और उनमें जो सबसे बड़ा आजकल जो एक मैं कहता हूँ नासूर उभर के सामने आ रहा है वो जिना के केसेस हैं, यानी जिना बिल जबर। अब ये जिना बिल जबर, हमारे साथ एक कॉलर है, पहले वो ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम सलाम अकील साहब, क्या ठीक-ठाक हैं?
0: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं लंदन से बात करता हूँ। बिजली के बारे में जो आपने बात बताई, वो आज तो आपने कानून के हद पर हवानी मसाइल पर आपने
0: जी जी
1: बात करनी है, तो एक मसला तो शायद इस तरीके से हल हो जाए तो बिजली को पर्सनलाइजेशन करे, ताकि जब बैलेंस हो तो बिजली हो, जब बैलेंस न हो तो बिजली ना हो। इंटरनेट इस तरह है कि वहाँ पर बिजली प्राइवेटाइजेशन है, वहाँ पर मीटर चल रहे हैं, पैसे आपके में आ जाए, पैसे आप वो आपकी बिजली के आप पर जो है ना मुनासर के आप बिजली ज्यादा करें या कम, आप अपने बैलेंस जो है ना अपने मोबाइल में रख लिया होगा, आपका मीटर जो है ना आपके बैलेंस से वही चलेगी। तो एक मसला में बिजली का ही है, ये जगह होगी कि वहाँ बिल जमा नहीं करता
0: जी।
1: और दूसरा जो मसला है, मैं आपका तवज्जो मकबूल करना चाहता हूँ, आपको आवाज मेरी आ रही
0: है? जी जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है।
1: टांक में जो है ना तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर 30-35 गाड़ियां निकलती है और 30-35 गाड़ियां आती है पिशावर से, जिसपे तीन बंदों को बिठाना जो है ना कानून है
0: जी।
1: अब गाड़ियों में जो है ना चार चार बंदे बिठा रही है और मुर्गियों जो इस पे टोंस रहा है गाड़ियों में, लेकिन मैं आपको उसकी तस्वीर भी दे सकता हूँ, गाड़ियों के नंबर और सवारियों की तादाद जो इसके बीच
0: जी जी जी
1: सवारी उनकी तादाद भी आपको दिखा सकती हूँ।
0: जी जी जी
1: एक भी नहीं, दो नहीं, कई गाड़ियों की मैं आपको तस्वीर भेज सकती हूँ और गाड़ियों के नंबर भी भेज सकती हूँ, लेकिन कानून ने कि वो उनके लिए कानून नहीं जो बड़े हैं, यहाँ पर दो कानून चल रहे, गरीब के लिए अलग है और अमीर के लिए अलग कानून है, वरना तीन सवारियों की बजाय चार सवारी आखिर क्यों बिठाता है, लोगों को क्यों बेवकूफियों की तरह जो है गाड़ी में टूटते हैं, इनके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठाता है। पांच ये बेहिस लोग है, ये इस पर कोई भी जो है अफगान की आवाम जो है ना उनमें कोई भी ऐसा जज्बा नहीं जो मतलब इज्तिमाई सोच रखे हो, सबका सोच इंतजाजी अपने आप तक मौजूद है, कोई भी जो है आवाम के लिए पूरे डस्ट काम के लिए नहीं सकता। लिहाजा अगर आपके रेडियो के जरिए जो है ना आवाम को या आवामी नुमाइंदों को या सरकारी मशीनरी को जो है ना मेरी आवाज पहुंच रही है, तो बराए मेहरबानी इसका भी कोई सदबाव करे तो बड़ी मेहरबानी होगी।
0: ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, मैं आपकी सारी बातों का जवाब भी देता हूँ, अपना ओपिनियन भी देता हूँ, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले इन्होंने बात की हमारे से जो कॉलर थे बिजली के हवाले से कि जी मीटर में ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है जिसमें आप अपना बैलेंस करवाते हैं, इस तरह मोबाइल फोन में बैलेंस होता है, इसी तरह आप बैलेंस करवाते हैं और जब आपका बैलेंस पूरा हो जाता है तो आपको फिर बिजली नहीं मिलती, जैसे ही आप बैलेंस डलवाते हैं तो बिजली फिर आती है, तो इसका टांक में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है।

कमा रहा है, और जो यहाँ पे 30,000 कमा रहा है उसको यहाँ पे बिल 60,000-50,000 रुपया अदा करना पड़ता है। तो ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है कुछ, मतलब इससे तो जरूर चोरी भी होगी, लोग डाके भी डालेंगे, हालात भी खराब होंगे, मामलात भी बिगड़ेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करने के लिए ये सारी बातें तवज्जो के साथ सुन के समझने की ज़रूरत है। अगर हम ये तमाम तर चीज़ें एड्रेस नहीं कर सकते, हम पाकिस्तान के, देखिए पाकिस्तान का मैं शहरी हूँ और इस्लामाबाद लाहौर में रहने वाला भी शहरी है, जो सहूलतें उसको फराम है अगर मुझे वो रियासत फराम नहीं कर सकती तो मेरे साथ फिर वो गुजारा करेगी, मेरे लिए वो गुंजाइश पैदा करेगी, मेरे लिए वो कुछ रास्ते निकालेगी कि जी इसको, चूंकि ये वो बच्चा मेरा वो नहीं है जो मुझे इतना कमा के दे, ये मेरा बच्चा वो नहीं है जो इतना बेहतर तरीके से मेरे मामलात को देखे, तो यहाँ रियासत मुझे बेहतरीन तरीके से बेहतरीन की तरफ लेके जाएगी, मेरे लिए मामलात को ठीक करने की कोशिश करेगी, मेरे लिए बिजली का बिल माफ़ होगा, आधे से ज़्यादा माफ़ होगा, मेरी रिकवरी नहीं भी होगी तब भी मुझे बिजली फराम की जाएगी, मुझे अच्छे स्कूल देने की कोशिश की जाएगी। देखिए जब आवाम पढ़ लिख जाती है तो पढ़ लिखने जाने के साथ मामलात खुद ठीक हो जाते हैं। आपने हमें तालीम की तरफ लेके जाना है, आपने अच्छे स्कूल फॉर, यहाँ देखें सरकारी स्कूलों का हाल आपके सामने है, कुर्सियाँ नहीं हैं, टॉट्स हैं, बुरा हाल, बहुत से स्कूल सालों से बंद हैं, उड़ा दिए गए हैं, वो खुलने का नाम नहीं ले रहे, उस्ताद साहिबान भी घर बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं, बहुत से मामलात ऐसे हैं। तो ये कैसे ठीक होंगे, ये अगर जब इतनी हालत बिगड़ी हुई है तो आप कैसे एक्सपेक्ट करें कि जी हमें 100% बिजली की रिकवरी दें या 60% 70% रिकवरी दें, कहाँ से दें हम रिकवरी भाई, हमारे पास पैसे नहीं है और बिजली हमें आप चाहिए, रियासत की जिम्मेदारी हमें दे, क्योंकि रिन्यूएबल सोर्सेज से बिजली बन रही है के पी के में बिजली पानी से बन रही है, सारी रिन्यूएबल सोर्सेज, पानी आता है डैम से गुजरता है, बिजली बनती है, पानी चला जाता है, फिर आ जाता है, तो फ्यूल की मद में कम बन रही है के पी के में, बहुत ज़्यादा बिजली जो है वो बन रही है डैम्स वगैरह से, तो उनकी तो इस आवाम के ऊपर हक बनता है कि जी के पी की आवाम के साथ गुजारा किया जाए, और सबसे ज़्यादा जो पिस रही है, सबसे ज़्यादा जो बर्बाद है वो हमारे के पी की आवाम है बिजली के लिहाज से अगर मैं देखूँ तो। लोड शेडिंग के डीए खान कैंट में मैं गया पिछले दिनों, डीए खान कैंट में इतना बुरा हाल है कि वहाँ घंटे पे घंटा है, तो टाँक में तो 18 घंटे के बाद में लोड शेडिंग चल रही है। तो ये सारे मामलात हैं, इससे मामलात बिगड़ते चले जा रहे हैं। तो उम्मीद है मेरी आज की बातें, आज की गुफ्तगू आपके लिए मुफीद रही होगी, उम्मीद है जो हमारे नुमाइंदे हैं, मुंतखब नुमाइंदे जो हमारे अहकाम बाला हैं, उन तक मेरी ये बात पहुँचेगी और वो इस पर कुछ सोचेंगे ज़रूर, और हम गरीब पिसी हुई आवाम के लिए कुछ सहूलत का जो है वो सामान पैदा करेंगे। अपने मेज़बान खुबाब अली आरई एडवोकेट को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी आपसे अगले इतवार को दिन 12 से 1 तक, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।

0: It's 1 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन।

दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

हेलो जी बिल्कुल कस रहे हैं दोस्तों, बाद 3 बजे 9:17 4 बजे पर रेशमा कॉस्मेटिक पाकिस्तान प्रोग्राम कीजिए। हां और दिन का अगला लिसनर हां का समय से इंतजार कीजिए 3 बजे 9:17 4 बजे पर वो मिस्टर यानी देमिश कुरबा देमिश प्रेजेंट देमिश साहब यानी अर्जगोन साहब रेशमा कॉस्मेटिक पाकिस्तान स्टाफ रोदरी और मिस्टर अखिस्तान गुलवरन शांति प्रोग्राम की जी बिल्कुल आगा दे इंतजार लम्हे बिल्कुल खत्म फले और ओवर दोस्तों सफल कुरबा इंजीनियर मसूद पता तक जेड मत गालिया तक स्पिन वर्ष पश्चिम बने जी और दिन के प्रोग्राम से गप शप मुश्किल है वैसे और सर और सर सॉल कॉल मैसेज को दे प्रोग्राम में सा जुड़े जी और सर इसमा के स्पेनिक पाकिस्तान की प्रोडक्ट थी आगे बने हो नाज अर्दर तक चावी जी बिल्कुल कल अकेला टाइम सिक्किम देखना अनुष्ठा जरूरत यानी पेश स्पेटिक पाकिस्तान प्रोग्राम ढेर टाइम बाद तो सरास दर्शवाई तेरा तर द्वे हफ्ते बाद द्वे द्वे द्वे नौ नौ नौ पता लगी चाहिए दिमिर शिशमा का स्पेटिक पाकिस्तान और विदिंग के चाचा मिस करा है और दे सरा देख कर रेडियो किम दे मुअफल और लिसनर दिखाना के तो ये कहना से तो से वहां शिरकत रो सरा के साइड हो गोश हो किम दिखाना देश वाले लिसनर से किम दिखाना या से ना ना गोश है गोशाई प्रोग्राम दे मिस्टर का ना ना ना देशमा का स्पेटिक पाकिस्तान प्रोग्राम दे पदक्ष कर लिसनर हां दे सरा और दे टैंक लिसनर दे सरा और दे सरा बाकी की रेडियो दे आगे मने तारिक भाई की प्रोग्राम दे तो से आर तलाश दे तारिक भाई प्रोग्राम पो दगाच की में रेडियो दे ये ने किम दे बजा वोट फुला देने लाओ तकबे फुला दे रेडियो फुला दे सरा सरा रेडियो पैगाम फुल नो मिस दा चोकली छे तारिक भाई मुझे किम कहना दा पखपले मान से सरा उवेशले ते तारिक भाई ता आ जबान से आ खबर का और सो छे किम कहना पखपल जबान के देख पले अवरिंग की ता दिल ता खबर है ओ कि से ओ का नो लिसनर समहिन करेक्ट है ओ का टांग दे कदे शमले जो नबी दी कवर सर दे बने गुल दे लकी मरवाती तो लिसनर ता प्रोग्राम से कलाय से माश वेलकम वेलकम अल्लाह जी बिल्कुल प्रोग्राम से तो से रतला से मिस्टर गढ़िन क्लास है 0322 98 98 999 यानी 03 अल्लाह 003 002 9899 85 9 के पर हरुना जोड़ के बचा जख्मों न तमल हम शिमिना ओए होए ओए होए ओए होए साइदो मनना मनना मनना मनना मजे और दिन प्रोग्राम से गप शप चले हैं सिरी दा मैसेज मतलब हर उधरमी और कॉल पर तरफ हर उधरमी मनन कोशिश ताकि कहना जिनिश मा कसम ने पाकिस्तान की प्रोडक्ट थी आगे बने हां नजर दर तो चाहो जग कहना चाक सार दिन और दिन के चार दिन में ना हो आगे गिले मने की चेहरा तो से हां मिस्टर प्रोग्राम से मौका न रुकावे नो मौका बिल्कुल दर तमिल वीडियो टोले तो मिला वीडियो दान दो करना दान दो करदा मौका तो सब मौका न मिला वीडियो टोले तो मिला वीडियो साइदो नो प्रोग्राम से गप शप मुश्किल है शेर दे और कॉल मैसेज दो दे प्रोग्राम में सा जुड़ जी दे कॉल नंबर में हदर ता शवलाई दे 0322 98 98 999 यानी 03 002 98 98 999 ससाव का नंबर दे और जसरो मौजूद भी साइदो

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and very warm welcome to all the sweet listeners of Global FM 91 Dera Ismail Khan, Radio Pegham 97.4 Pahadpur and Radio Aman 88.4 Dhaka. जी जनाब, तीन रेडियो स्टेशन और एक आवाज, और ये आवाज है केसन नेचुरल पाकिस्तान की आवाज। जी तो सामने ग्राम, कैसे हैं आप सभी लोग जनाब? उम्मीद करता हूँ कि जनाब बिल्कुल जी खैरियत से आफियत के साथ होंगे। सुपहर के चार बज चुके हैं जनाब, और चार बजते ही जनाब तीनों रेडियो स्टेशन टांक, डेरा और पहाड़पुर से आपको ये आवाज सुनाई देती है आपके अपने शहर की फ्रिक्वेंसी पर। तो जनाब डेरा इस्माइल खान टांक और पहाड़पुर में सुनने वाले तमाम सामीन इकराम, तमाम गर्ल्स एंड बॉयज, अंकल एंड आंटीज, चाचा एंड चाचीज, मामा एंड मामी, दादा एंड दादी, नाना एंड नानी, ऑफ कोर्स सभी सुनने वाले को खलील ताबे शवान का सलाम। और ये है केसन का केसन टी टाइम शो। जी जनाब, चाय के एक कप के साथ, चाय की चुस्की के साथ जनाब, चाय की लज्जत के साथ जनाब, अपने आप को एक दफा फिर से बेदार करने का ये वक्त होता है, क्योंकि जनाब सारा दिन के ढेर सारे काम करने के बाद जो है वो आपको हमेशा जो है चार्जिंग की जरूरत पड़ती है, हमेशा थोड़ा सा रिलैक्स करने की जरूरत पड़ती है। तो इस वक्त आप लोग बिल्कुल जी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, सस्ताते हैं, और इसके साथ चाय पीने के साथ ही जनाब रोजमर्रा के जो बचे कुचे काम होते हैं उनको सर अंजाम देंगे, दे रहे होंगे। तो जनाब चाय के कप के साथ जनाब केसन का प्रोग्राम आप समाप्त फरमाएंगे पूरा एक घंटा अब से लेकर ठीक 5 बजे तक। केसन नेचुरल पाकिस्तान के ये प्रोग्राम लाइव इन अलाइव बिल्कुल जी बराह रास आप लोग सुनते हैं अपने रेडियो, अपने शहर के रेडियो के ऊपर। और केसन का पैगाम जो होता है वो सेहत का पैगाम होता है, वो खूबसूरती का पैगाम होता है, और एक नारा, एक स्लोगन जो केसन का है जब से केसन बनी है कि प्यारा लगना तो आप सबका हक है। ठीक है जनाब, लेकिन ये एक लाइन है और इस लाइन के पीछे बड़ी कहानी होती है। इस दुनिया के अंदर कोई भी प्यारा, डेफिनेटली अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत ही प्यारा बनाया है। नए नस्ल के हवाले से हर एक बंदा जो है वो मुख्तलिफ सा है, और हर बंदा जो है खूबसूरत है अपनी जगह के ऊपर। लेकिन कहते हैं ना आपको कि इस दुनिया के अंदर आने के बाद जो है आप पहले वाले नहीं रहते हैं, और आपकी स्किन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। सो जनाब केसन है ना, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको खूबसूरत खूबसूरत से चेहरे की रंग जो पहले गोरी हुआ करती थी वो सांवली हो गई है, काली सी हो गई है, वो चेहरा जो पहले दागों के बिना होता था, यानी कि उसके ऊपर दाग नहीं हुआ करते थे जब अल्लाह ताला ने आप इस दुनिया में भेजा, लेकिन दुनिया के रंग ढंग में ढल गए और जनाब आपकी स्किन के ऊपर छाइयां और दाग धब्बे आने का काम शुरू हो गया, या फिर आपकी स्किन जनाब इन्फेक्शियस स्किन हो गई, यानी कि दाने वाने, पिंपल्स और रैकनी का शिकार हो गई है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि केसन है जो आपके पास, और केसन कुदरत के खजाने से जनाब बगैर मुजिकर केमिकल के हम आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं जो कि आपको डिजायर रिजल्ट देते हैं। हाँ जनाब, डिजायर रिजल्ट किसको कहा जाता है? डिजायर रिजल्ट बोलते हैं वो रिजल्ट जब आप कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं और खरीदते हैं और एक सपना सा अपने जहन के अंदर बना लेते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, करने जा रही हूँ, तो ये मुझे किस तरह के रिजल्ट देगी। तो जनाब केसन नेचुरल पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कुछ प्रोडक्ट जो है खूबसूरती के लिए है, कुछ प्रोडक्ट आप लोगों की सेहत के लिए हैं, और सेहत की प्रोडक्ट जब आप इस्तेमाल करते हैं उसमें बड़ा मुश्किल होता है जनाब। जब किसी बीमार को शिफा मिलती है आपके प्रोडक्ट के जरिए, क्योंकि जनाब जब कोई बंदा बीमार होता है मुख्तलिफ किस्म के अमराज में मुंतकिल होता है, तो फिर एक डॉक्टर से गया शिफा ना मिली, फिर दूसरे के पास गया फिर शिफा ना मिली, फिर तीसरे के पास, फिर आखिरकार ये होता है कि आपको रेफर किया जाता है। तो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं मेडिसिन के जो प्रोडक्ट होते हैं, जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट होती है उनको बहुत ज्यादा एफिकेशियस बनाया जाता है, यानी कि एक्यूरेसी उसके अंदर इस तरह होती है कि जनाब जो बीमारी की हालत में इसको इस्तेमाल करे तो वो सेहत याब हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा जनाब किसी भी कंपनी का कमाल होता है, और हम तो कॉस्मेटिक की कंपनी है लेकिन हमने आपको ऐसी प्रोडक्ट्स दे दी अल्हम्दुलिल्लाह कि आपके सेहत को प्यारा बनाती हैं, खूबसूरत करने के साथ साथ आपको सेहतमंद भी रखती हैं और आपकी बीमारियों को भी खत्म करती हैं। और ये वजह कि हम कहते हैं कि केसन तो शिफा है, हर दिल की सदा है, और सबसे बढ़कर क्या है कि केसन जो है वो रब की आता है। ये आप हमारा ट्रैक, हमारा तराना अक्सर सुनते रहते हैं और इसी के अंदर ही हमारा पैगाम होता है।

0: जी जनाब, ये जो तीन लाइनें हैं ना, ये हमारी एक लिसनर थी, बल्कि हैं सुहाना, आप ही जो अक्सर हमें कॉल करती रहती हैं, ये उनकी तरफ से हमें एक शेर लिख के भेजा गया था कि क्या ही कंपनी है ये। और
1: हर दिल की सदा है केसर,
0: हर दिल की सदा है केसर,
1: शिफा है शिफा है केसर,
0: शिफा ही शिफा है केसर,
1: क्योंकि रब की अता है केसन केसन।
0: जी जनाब, क्योंकि रब की अता है केसन। जी जनाब, और रब की अता का मकसद मतलब हम क्या लेते हैं? ठीक है जनाब, रब की अता, जब इसके अंदर ये जो शायरी आपको सुनने को मिलती है, रब की अता है केसन, तो इसका मतलब ये है कि हम जो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीजें हैं, जो किसी मेडिसिन की सूरत में नहीं है, जो किसी मेडिकल इसका हिस्सा नहीं है, यानी कि किसी केमिकल प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, रब की अता है केसन का मतलब ये है कि जो कुदरती तौर पर कुछ जड़ी बूटियां, फूल या हर्ब्स या तेल मौजूद हैं, जिनको डायरेक्ट हम आपकी खिदमत में ब्यूटी प्रोडक्ट्स की सूरत में उनके जो अर्क होते हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं और आप तक, आपको ये पैगाम पहुंचाते हैं कि ये रब की तरफ से अता करदा प्रोडक्ट्स हैं। तो जनाब, इन्हीं प्रोडक्ट्स के अंदर हमारा ऑयल और शैम्पू है, जो कि इस वक्त मार्केट की बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है, बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला ने जितनी इज्जत हमें इन दो प्रोडक्ट्स के अंदर दी है, जिसके ऊपर हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें कम है, बालों की ट्रीटमेंट के लिए, बालों को बेहतर बनाने के लिए, बालों का ख्वाब सच करने के लिए, बालों को खूबसूरत और प्यारा बनाने के लिए, जो हमने दो प्रोडक्ट आप लोगों को दी हैं, केसन ऑयल और केसन शैम्पू, इनके कोई सानी नहीं है मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह। और जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें समझ आ रही है कि वाकई जिस तरीके से केसन कहती है कि ये कुदरत के खजाने हम आपकी तरफ लेके आए हैं, तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। सो जनाब, आप सभी लोगों का बेहद शुक्रिया। अगर आपके घर के अंदर ऑयल हमारा मौजूद है, आप केसन का, आप केसन को मजबूत करने वाले हैं, ठीक है ना, केसन की बैकबोन है आप लोग, अगर आपके घर में केसन का ऑयल और केसन का शैम्पू मौजूद है, तो आप इस कंपनी को अपने पांव पर खड़ा करने में आप लोगों का किरदार है, और आप लोगों की मोहब्बत, बेपनाह एतबार, एतमाद और ट्रस्ट की बदौलत इस वक्त मार्केट का नंबर वन ऑयल और नंबर वन शैम्पू बन चुका है केसन हेयर ऑयल और शैम्पू, और इसको हमने नाम दिया है केसन जोड़ी का। और केसन जोड़ी आप इस्तेमाल करते होंगे, यानी कि ऑयल और शैम्पू को एक साथ इस्तेमाल करना, और अमेजिंग किस्म की फार्मुलेशन है, यानी कि इसके अंदर 17 अज्जा तेल के अंदर हैं और 13 अज्जा शैम्पू के अंदर पाए जाते हैं। कोई भी कंपनी शैम्पू के अंदर इतना पैसा नहीं लगाती है, कोई भी कंपनी इतने ज्यादा अज्जा से शैम्पू बनाकर आपको नहीं देती है जिस तरीके से हम आपको बनाकर दे रहे हैं। और यही वजह है कि बड़े बड़े ब्रांड जो लोग यूज करते थे, ठीक है जनाब, अगर मैं नाम लेना चाहूं तो पैंटीन, हेड एंड शोल्डर, सनसिल्क, जो बड़े बड़े ब्रांड जिनके इश्तेहार टीवी के ऊपर चलते हैं, और उन लोगों ने जब स्विच किया, ठीक है जनाब, उन लोगों ने जब स्विच किया केसन की तरफ, तो माशाल्लाह उनको देखते हुए लोगों ने और केसन के ऑयल और शैम्पू को खरीदना शुरू किया है, क्योंकि ये वो चीज है जो देखने के बाद जो होती है लोगों को ट्रस्ट और बनता है। ठीक है जनाब, जिस तरह मैं आपको कहता हूँ कि टांक में अभी हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है जनाब, जिन लोगों ने पहले महीने के अंदर हमारा ऑयल और शैम्पू खरीदा, ये कोई ऐसा मैजिकल ट्रीटमेंट नहीं होती है, जैसे कुछ चीजें होती है ना, जैसे कि क्रीम हो गई तो आपको 5-6 दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाता है, फेस वॉश हो गए तो फौरन रिस्पांस मिल जाता है, सोप्स हो गए तो फौरन रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है जनाब, शिफाए दर्द हो गया, जैसे कि दर्द का तेल है तो फौरन आपको शिफा मिल गई, आपने जनाब जो है हाजमे का सिरप लिया तो आपको फौरन पता चल गया। ये वो प्रोडक्ट है हमारे जो कि क्विकली आपको रिजल्ट देते हैं, क्योंकि इनका मैकेनिज्म इस तरीके से होता है, लेकिन कुछ चीजों का मैकेनिज्म जो होता है वो मुख्तलिफ तरीके का होता है, जैसे कि बालों की जब हम ग्रोथ करते हैं, अब जिन लोगों ने पहले महीने के अंदर, खलील भाई की बात सुनकर टांक वालों से मुखातिब हूं, डेरा और पहाड़पुर में तो हमें कोई इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और धड़ाधड़ लोग खरीद रहे हैं, और ब्लाइंडली ट्रस्ट है लोगों का ऑयल की वजह से और शैम्पू की वजह से केसन के और प्रोडक्ट खरीदे जाते हैं, लेकिन टांक के लोगों को कब पता चलेगा कि वाकई ये जो हमने 3 महीने ऑयल और शैम्पू लगाया है, 3 महीने की मैं बात कर रहा हूँ, ज्यादा बात भी नहीं कर रहा हूँ, यानी कि 3 महीने जब आप रेगुलर इस ऑयल और शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कहते हैं केसन जोड़ी। हाँ जी,

जी जनाब, बालों में जाल डाले नई जान। और कौन से बालों के अंदर जान डालने की जरूरत होती है? हाँ जनाब, वो बाल के जिनके अंदर जान ही नहीं होती है। हैं जनाब, वो बाल के जिनके अंदर जान ही नहीं होती है। और ऐसे बाल के जिनके अंदर जान नहीं होती है, ऐसे बालों को हम कैसे कैसे पहचानेंगे कि हमारे बालों के अंदर जान ही नहीं है? ठीक है जनाब, अगर आपके बाल जो है दो मुए हैं, ठीक है जनाब, एक मुए नहीं है, अगर आपके बालों के अंदर चमक नहीं है, अगर आपके बाल जो है उनकी साइज जो है मोटाई में कम है, और आपके बाल जो है वो झाड़ू की तरह पड़े हुए हैं आपके सर के ऊपर, और आप अपनी फिंगर्स फेरती हैं तो वो कहीं उलझ जाती हैं, तो भाई ये वो बाल हैं कि जिन बालों के अंदर जान ही नहीं है। और जान डालने के लिए क्या करेंगे?

जी जनाब, बालों में डाले नई जान। अच्छा, कुछ बाल इस तरीके के बेजान हो जाते हैं और कुछ बाल जो है आपकी अपनी हरकतों की वजह से। अच्छा सॉरी, मैं टॉपिक बताना आज आपको भूल गया, हरकत से मुझे याद आ गया। आपकी हरकतों की वजह से भी आपके बाल जो होते हैं ना, वो बेजान हो जाते हैं। तो आपकी हरकतें वो कौन सी होती हैं कि जिसकी वजह से आपके बाल जो है वो बेजान हो जाते हैं, वो तो मैं आपको बताता ही हूँ। लेकिन आज का टॉपिक जो है, मुझे बताइए जनाब कि लोगों की कौन सी हरकतों की वजह से। यार आज ये हमारा FM कहाँ पर कट रहा है? पहाड़पुर वालों के पास कट रहा है बार बार, डेरा वालों के पास, या फिर टांक वालों के पास? कहीं ना कहीं इश्यू है, क्योंकि मेरे पास जो स्टेटस आ रहा है वो भी स्टेटस ठीक नहीं यार। किसी एक FM के ऊपर हम डिस्कनेक्टेड हैं क्या? अच्छा जी, तो मुझे जो है वो मैं आपको सवाल का टॉपिक जो है वो ये है कि यार कौन सी लोगों की कौन सी हरकतों की वजह से लोग आपके दिल से उतर जाते हैं या उनको आप उतार ही देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उतर जाते हैं, कुछ को उतारना पड़ता है। तो आपकी जिंदगी में बहुत दफा ऐसा हुआ होगा कि बहुत सारे लोग आपके दिल में आते भी हैं, जैसे हम आप कुछ दिन कह रहे थे ना कि दस्तक किए बगैर भी कुछ लोग आपके दिल में आ जाते हैं। लेकिन फिर बाजूकात ये होता है कि कुछ लोगों को दिल से निकालना पड़ता है, यानी कि उनको धक्के दे के उतारना पड़ता है। और कुछ लोग जो है शर्म से खुद ही उतर जाते हैं कि यार ये जो है ना, ये दिल इतना पाक साफ है जी, इतना प्यारा, और हम इतने मैले कुचैले गंदे है जी, हमारे रहने की जगह नहीं है। तो कुछ लोग तो खुद ब खुद से जनाब उतर जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को दिल से उतारना पड़ता है। तो भाई आप मुझे बताएंगे कि जी जनाब बताएंगे कि आप किस लोगों के किन हरकतों की वजह से, लोगों की किन हरकतों की वजह से आप लोगों को अपने दिल से निकाल देते हैं, हाँ जी उतार देते हैं। हमें कॉल या SMS कर सकते हैं आप 03449363366, 03449363366। अभी हमारा नंबर है 03044936366, या फिर 03137978545। गर्मियों का दिन है।

0: जी जनाब, हजमा कंट्रोल सिरप केसन को जो है गर्मियों में वैसे तो पूरा साल पिया जाता है, लेकिन गर्मी के अंदर इसकी अफादियत इसलिए बढ़ जाती है कि जरासीम बहुत तेजी के साथ जो है ना वो अपनी अफजाइश करते हैं। तो जब हाँ, ये मेरा फेवरेट ट्रैक है वैसे हजमा कंट्रोल का। हाँ जी, आइए मिल के सुनते हैं। लेकिन जी जनाब सुनते हैं और उसके बाद आपकी कॉल्स की तरफ बढ़ेंगे।
1: हाजमा हो जब अनकंट्रोल।
0: हाँ जी।

जी जनाब, गर्मी के अंदर मैदा बहुत ज्यादा बिगड़ने की वजह बनता है जनाब, और क्योंकि जरासीम की अफजाइश बहुत, चीज को आप ओपन रख लें, खाने को रख लें तो खाना भी खराब हो जाता है। इसी तरीके से फ्रूट्स अगर पड़े हों तो फ्रूट भी खराब हो जाते हैं, कोई और डेजर्ट्स वगैरह जो है, खाने पीने की चीजें जो है, मीठी मीठी चीजें, वो भी खराब हो जाती हैं, सालन भी खराब हो जाते हैं। तो वजह क्या होती है? वजह क्या गर्मी होती है? जी बिल्कुल गर्मी होती है, लेकिन गर्मी के अंदर ऐसा क्या होता है कि ये चीजें खराब होती हैं और उसके बाद आपको हैजा हो जाता है? वजह ये होती है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जो वायरस होते हैं, जो जरासीम होते हैं, उनकी अफजाइश जो होती है, बच्चे पैदा करने का जो अमल होता है, वो गर्मी के अंदर बहुत हद तक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जब सर्दियों में आपके घर में अगर एक बर्तन के आसपास 10 जरासीम है तो गर्मियों के अंदर 100 होते हैं। ठीक है जनाब, फिर यही जरासीम आपके जिस्म के अंदर जाते हैं और फिर आपको, आपके मैदे को खराब करते हैं। ठीक है जनाब, तो गर्मियों के अंदर हाजमा कंट्रोल सिर्फ बहुत जरूरी है। और एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, आप आ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 0344-936-3366 के ऊपर या फिर 0313-798-4545। गर्मी है तो क्या क्या इस्तेमाल करेंगे केसन का?

0: man. जी जनाब, अकबर फॉर मैन एंड ज़हरा फॉर वुमेन, एक कॉलर हमारे साथ हैं। जी वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। जनाब कॉल करके आप इस तरह की हरकतें मत किया करें, या नहीं तो आप मेरे दिल से उतर जाएंगे। बिल्कुल ना सिर्फ मेरे दिल से उतर जाएंगे बल्कि मैं आपको दिल से उतार दूंगा और आपके नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दूंगा अगर इस तरह की आप हरकतें करेंगे। ठीक है जनाब, तो हरकतें जनाब एक और कॉलर है, उम्मीद है ये हरकत नहीं करेंगे मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जनाब, मेरी आवाज आप तक पहुंच
1: परफ्यूम लाजवाब अकबर फॉर मेन ज़हरा फॉर वुमेन।
0: जी जनाब, गर्मियों में क्या क्या केसन का इस्तेमाल करें? जी जनाब, हाजमा कंट्रोल सिरप इस्तेमाल करें क्योंकि जरासीम गर्मियों में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक और कॉलर है क्या?
2: हेलो
0: जी, अस्सलाम वालेकुम।
2: हेलो,
0: अच्छा जी एक सेकंड ठहर जाए, ठोर ना जाए, ठहर जाए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? ठीक है, उर्दू में बात करेंगे, उर्दू में, मादरी जुबान उर्दू। अरे पश्तो न पोएगा मणा है जी, पश्तो। इंग्लिश में बात कर सकते हैं? इंग्लिश या उर्दू या सराकी, तीन ऑप्शन है आपके पास। पश्तो को छोड़कर आप किसी भी जुबान में बात करना चाहें, सिंधी में, इंग्लिश में, उर्दू में, सराकी में, हिंदको में। देखिए यार, भाई को सिर्फ एक ही जुबान आती है पश्तो, और मुझे चार जुबानें आती हैं। तो चलो जी, एनीहाउ जी, लोग जो है टांग में है बहुत ज्यादा पश्तो ही बोलते हैं। सो गर्मियों में आप केसन का भी क्या क्या लगा सकते हैं? अच्छा, एक तो केसन का हाजमा कंट्रोल सिरप इस्तेमाल करेंगे, दूसरा जाफरानी साबन इस्तेमाल करेंगे। गर्मी में धूप की तपिश की वजह से आपका जो चेहरा काला हो जाता है ना, नहीं होगा, हम गारंटी देते हैं आपको। जी अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम सर खलील खान।
0: सर की हाल है? ठीक ठाक ही वे, चंगे वदे वे तुसा?
2: शुक्र है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। तू सुना?
0: बस कर रहा मैं, अल्लाह दा ते आज आखरी दीवार गर्मी दे सा तुहारे नाल इथा एंजॉय करने, मैं कल को इंशाल्लाह ठंडे इलाका दे विच।
2: माशाल्लाह माशाल्लाह, तुहाडे हक की दुआ करे।
0: हां तुहाडे हक च असा हज उमरे ते वेंदे पए। ठंडे इलाके दी दुआयां जल्दी कबूल थी ने
2: यार, दुआ करे से जो साहब अल्लाह के ने।
0: अच्छा, ये दुआ कर रही? ठीक है, चलो ये दुआ करे सु कि भाई शजान भाई भी आदन के अल्लाह पाक उन्हों को गिन वजो, बेशक अल्लाह दे हुक्म नाल ही बंदा जिनते सफर करेंदा है या कोई भी तौफीक मिलती है अल्लाह पाक दी मदद नाल ही होंदी है। अल्हम्दुलिल्लाह। साथ है पैसी गर्मियां हीन ते हिक ता हाजमा कंट्रोल सिरप अपने घर ही रखो, मैदा बो पर हीट अप थी सी। ठीक है सही,
2: बिल्कुल जरूरी है।
0: हाँ, दूजा जफरानी साबण अपने को रखो क्योंकि धूपते वैसे हो तो तुम्हारे बाद स्किन काली थी सी, अगर दो दफा जफरानी साबण नाल मुंह धोसो तो गारंटी है मुंह काला न थी सी।
2: बिल्कुल मुंह काला नहीं थींदा उंदे नाल।
0: ते त्रीजी गल है कि अगर दर्द वर्द का मामला है तो केसन शिफा दर्द को अपने घर रखो, अद्धे को ज्यादा असर तो को हकीम ते डॉक्टर बढ़ा दिता है। ठीक है सही,
2: अपना इलाज
0: अपने दिल कड छुड़े ने
2: लोगा
0: दे सारे दिल तो गया बंदा एडी लंबी काल किन गए।
2: अल्लाह
0: चलो ठीक है सर, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जनाब। और पहले कॉलर थे और हमें कह रहे हैं कि भी मैं मेरे दिल से लोग उतर जाते हैं जो बात लंबी करते हैं फोन के ऊपर है जी।
3: दिल की सदा है के संग शिफा है,
0: दिल बड़ी नाजुक चीज है जनाब, जो चीजें ये बर्दाश्त करे सो करे वरना दूसरों को ऐसे किक मारता है जी। जाओ तुसी अपने घर जी, हमने आपको इधर नहीं रहने देना। एक और कॉलर है हमारे साथ जनाब, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह तो शुक्र है सही तुसा सुनाओ ठीक ठाक है वे तुसा केरे लोगों को अपने दिल दे उतू हटेंदे वदे वे ते लहेंदे वदे वे इतना बड़ा दिल ले तो अदा जरा उका ते हर के को बर्दाश्त की थी पे वे
2: बिल्कुल मुसलमान दा हक बन दे दिल चुकदे नहीं इंसान
0: अच्छा
2: तो
0: यानी के कोई भी अगर राजे गफूर दे दिल च आ गई है तो भाई वो बेफिक्र थी मुझे भाई मैं हमेशा रासा मैं को कह धिक्का नहीं देना इतु को ना कह किक मारनी है अच्छा जी यानी कि तुस अपने दिल को लहन दे नहीं वे क्या कोई कोई आके कि मैं लावना चाहना मेरे तो हां सोड़ा थी ने बात मैं आके कोई आके कि मेरा हां सोड़ा थी नहीं था मैं लावना चाहना हूं ना कि करे सो बात नहीं समय ना गात हाजमा कंट्रोल सीधा पी दे बस लोग तुहाडे पासे गर्मी को देखदे हुए जाफरानी साबण ते हाजमा कंट्रोल सिरप ते तेल ते शैम्पू लेंदे वदे या चुप कर गए पहले दसो
2: लेंदे वदे हाजमा कंट्रोल सिरप जिन्हें कुर्बानी ते मजा कीता सुना
0: हां तुहारा हुण गोश्त वैसे मुक गया या फ्रिज च हाले कोई कोई खाना भरा पिया
2: खत्म कर दिता
0: अच्छा दसी खत्म कर छोड़ा
2: बिलकुल बिलकुल इंशाल्लाह गोश्त कल मुकिया
0: है चलो ठीक है सही बहुत मेहरबानी राजा गफूर पंच गरई को सारे को लैन कल एक पंच गरई को लैन राजा गफूर साहब को सारे को एक बंदा आया कोई 8-10 हज़ार रुपए का सामान गिन के पंच गरई को लै ठीक है सही कौन है दसा वे सर एड्रेस तो सुनो को हाँ हाँ बिल्कुल कल एन थे मैं तो कोनी हमले के बाद ही मैं को असिस्टेंट ने रिपोर्ट दी कि कोई बंदा पंज गिरई को लाया थे बहुत सारा सामान
2: बिल्कुल बिल्कुल आया अच्छा नासिर पलोच शुरुआती है फिर उन्होंने को सलाम दे सुझा
0: ठीक है जी ठीक हो गया जनाब बहुत मेहरबानी शुक्रिया राजा गफूर पंज गिरई में होते हैं और इनके पास हमारा सेल पॉइंट भी है जनाब और ये हमारे प्रोडक्शन के पास सादात कंडा के साथ जो है इनका सेंटर है दुकान है इनकी जनाब जहां पर आपको किसन के सारे प्रोडक्ट मिलते हैं और मैं आपसे कह रहा हूँ कि गर्मियों के अंदर वो मेरी तमाम बहनें जिनके बालों का मसला है भाई इस गर्मी में आप खत्म कर सकते हैं जी अस्सलाम वालेकुम
4: जी वालेकुम सलाम
0: क्या हाल है जनाब
4: आप ठीक है
0: मैं बिल्कुल जी ठीक हूँ टांग से बात कर रहे हैं आप
4: मेरा नाम गुलाबदीन है और उमर अली टांग से
0: टांग एफएम सुन रहे हो
4: जी उमर अली से ताल्लुक रखता है
0: उमर अड्डे से कहाँ से पंजाब से हो या टांग की तरफ से हो उमर अड्डे रखता है उमर अड्डा कहाँ पर है ब्रदर कौन से इलाके में पाया जाता है ये उमर अड्डा कौन सा इलाका है टांग की तरफ पहाड़पुर की तरफ या डेरा की तरफ यही तो मैं कहता हूँ यार टांग वाले बंदा जब हेलो करता है ना तो समझ आ जाती है ये उस पानी ये इसने वो पानी पिया हुआ है टांग का जुबान की समझ आ जाती है ना
4: जी जी हम प्रोग्राम बहुत अच्छा है
0: बहुत अच्छा कब से सुन रहे हैं आप
4: हम प्रोग्राम बहुत अच्छा है
0: कब से सुन रहे हो मेरे शहजादे हफ्ता हुआ है या अभी एक दो दिन अच्छा चलो ठीक हो गया भाई आपने कॉल किया आपको वेलकम करते हैं अपने शो के अंदर और आप लोग आ रहे हैं जनाब 2-3-4-9-3-6-3-3-6
3: हर दिल की सदा
0: किन हरकतों की वजह से बाल मुर्दा हो जाते हैं वो मैं बता रहा था बीच में कॉलें आना शुरू हो गई तो भाई एक हरकत जो खवातीन करती हैं अपने बालों के साथ हेयर स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करती हैं अपने बालों को बिजली वाली इस्त्री से सीधा करती है ठीक है जनाब हेयर स्ट्रेटनर यूज करती हैं इलेक्ट्रिक स्ट्रेटनर यूज करती हैं हीट स्ट्रेटनर यूज करती हैं तो उससे बाल बिल्कुल मुर्दा हो जाते हैं अस्सलाम वालेकुम
4: वालेकुम सलाम
0: अब्दुल हादी खान शरण
4: भाई,
0: शाहिए
4: आमंदा,
0: ठीक ठाक आप सुनाओ, खैर खरियत है?
4: बस तो नारा लगा नहीं बचते।
0: हाँ तुसा सिखे सु साकू था है शो दे बाद तुसा साकू याद नहीं वे करेंदे कोई अद्धा घंटा साकू शो दे बाद देओ जो असा को पछतो अलावण दे काबिल थी वंजे तड़े माशे सिखे दे कसम है।
4: तो भी आना करो तो भी क्या करे तू।
0: चलो ठीक है सही, टॉपिक सारा आज ये है कि भाई तुसा भी अपने दिल तो लोगों को लहा छुड़े देवे या वदे रांदे ने एक दफा वंजंदा रुख़सत गिन के गर्मी बहुत ज्यादा थोड़े ठंडे इलाके के अपने दिल को दिमाग को ठंडा करके आऊं कोई बंदा कितने ही परेशान करवाजे तुसा दिल तो नहीं वे लेंदे को?
4: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं लेने, बिल्कुल
0: वदा रहंदे चाहे दिल दुखावे वदा ढोला तो है ना वद भी है जी, रोला रोला पावे या ना पावे ढोला तो है जी, जितने रोला रोले पांदे रोले पावे ढोला तो है। मेहरबानी अब्दुल हादी, बहुत शुक्रिया,
4: बहुत शुक्रिया खलील भाई,
0: थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और बात में कर रहा था कि लोग अपनी हरकतों की वजह से जनाब अपने बालों को बेड़ा गर्क करते हैं। एक तो ये जो हमारी बहनें हेयर स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करती करें इनको, लेकिन ईद की ईद कर लिया करो यार, ये हर छोटे बड़े फंक्शन के ऊपर जाकर अपने बालों को स्ट्रेट करना, वो भी इलेक्ट्रिक डिवाइस के साथ, ये अपने बालों को मुर्दा करना होता है। जी अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम खलील भाई, क्या हाल है?
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, रजा अवान तनी सारे नार मलिक मी हमारे
5: जी, मलिक मलिक रजा,
0: मलिक रजा की हाल है? सही चंगे वदे वे तो सब ठीक ठाक,
5: ठीक ठाक करियर तो सुनो
0: करम है अल्लाह तो जी करम है, बिल्कुल ठीक ठाक है।
5: बहुत ज्यादा मेरे ख्याल गर्मी कर गए हो
0: है कहने ते
5: ठंडे पाते वाले में दे।
0: हाँ असा के यार कोई दीवार वास्ते असें गर्मी हुन बर्दाश्त नहीं थी
5: नफरत नहीं करनी चाहिए। किस किस्म इंसान नफरत नहीं चाहिए, अगर कोई बुरा अमल है तो उस नफरत करो, इंसान तो नफरत कभी ना करो, अपने दिल जगह दे।
0: वेरी गुड, वेरी गुड, लॉजिकली करेक्ट आंसर है जी। बुराई से नफरत होनी चाहिए, बंदे से नहीं होनी चाहिए,
5: बंदे से नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म ने बंदा उधर अपने दिल जगह दे।
0: हजरत अली करम
5: को बुरा फेल है तो उसकी नफरत करो,
0: हजरत अली का फरमान है आई थिंक।
5: जी जी जी बिल्कुल,
0: मौला अली दी गालियां सारी में दिलो दिमाग दुआ को रोशन कर देने, इल्म दा दरवाजा आन सही है जी, इल्म दा दरवाजा ता उन्हां दी कोई भी हिकायत दी रही है कोई भी रिवायत तो सच्ची होंदी है माशाल्लाह, ते वो ज़हन दिमाग को एक्सेप्ट करेंदे। बिल्कुल
5: बाकी
0: चलो मौसम चंगा,
5: गर्मी को थोड़ी साइड गर्मी
0: नहीं निकला हल्का ठंडे इलाका निकलो गर्मी बहुत ज्यादा है। मलिक साहब बहुत मेहरबानी सही, शुक्रिया
5: नमस्ते
0: जनाब, तुम्हारी तरफ सलाम हो गया। मलिक रजा अवान हमारे साथ है, आप लोग ऐसे में सर कॉल कर रहे हैं और आपके मैसेजेस को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन मैं बात कर रहा था वो बात मेरी अधूरी रह जाएगी, उसको मुकम्मल करते हैं कि टॉपिक जिस तरह हमने रखा हुआ है कि आप लोगों को दिल से कब उतारते हैं, और बाद लोगों की जो हरकतें होती है ना, हरकतें वो आपको मजबूर कर देती हैं कि आप उनको दिल से उतार देते हैं या उनका वो मकाम नहीं रहता अपनी हरकतों की वजह से। वो हरकतें कौन सी होती है वही आप लोग हमें बता रहे हैं, ठीक है जनाब, कि कौन सी हरकतों की वजह से लोग आप अपने दिल से लोगों को हटा देते हैं, उतार देते हैं जनाब इज्जत के साथ या जनाब धक्का देकर एनी हाउ उतारना मकसूद होता है। खवातीन के बाल किन हरकतों की वजह से बेजान हो जाते हैं और हम कहते हैं जी केसन अगर आयल आपके पास मौजूद है केसन हेयर आयल तो ये आपके मुर्दा बालों के अंदर जनाब जान डालने की मुकम्मल सलाहियत रखता है, क्योंकि इसके अंदर जो अज़ा मौजूद हैं वो बखूबी जानते हैं कि आपके बाल मुर्दा किस वजह से हुए हैं। ठीक है जनाब, आपके बाल क्यों मुर्दा हुए हैं, बेजान आपके बाल क्यों हुए हैं।

0: जी जनाब, आपके बालों के अंदर जान डालने वाला ये फार्मूला जिसको हम कहते हैं केसन हेयर ऑयल, और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कामयाबी के रिकॉर्ड तोड़ रहा है ये प्रोडक्ट, जिस इलाके में भी मौजूद है, बड़े से बड़ा ग्रोसरी स्टोर, बड़े से बड़ा कॉस्मेटिक स्टोर, बड़े से बड़ा जनरल स्टोर गवाही देगा आपको हमारे इस प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी की कि किस तरीके से ये इस वक्त मार्केट का लीडर बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग ऑयल स्पेशली खरीदते हैं बालों की निगहदाश्त के लिए। ठीक है जनाब, बालों की ग्रोथ के लिए अगर आपको कोई अगर आप बालों के शौकीन हैं, यकीन कीजिए, मैंने उस दिन अपनी टीम से कहा कि डेरा के जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े बालों के जो शौकीन लोग हैं, उसके लिए हम एक जो बालों के शौकीन हजरात हैं उनके लिए हम एक कॉन्टेस्ट करवाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। ठीक है, उसमें बड़े बालों वाले जितने लड़के हैं स्पेशली, ठीक है जनाब, जो जुल्फों के शौकीन हैं उनका एक मुकाबला करवाएंगे, और उनमें से कुछ लोगों को हम कुछ अरसे के लिए जो है वो ऑयल फ्री भी देंगे, जो बालों के शौकीन हजरात हैं। तो जो बालों के शौकीन हैं भाई, हमेशा जो शौकीन बंदा होगा ना, वो जिस चीज का भी शौकीन है, चाहे वो कबूतर रखने का शौकीन है, चाहे वो कुत्ते रखने का शौकीन है, चाहे वो भेड़ बकरियां रखने का शौकीन है, चाहे वो घोड़े रखने का शौकीन है, ठीक है जनाब, चाहे वो परिंदे रखने का शौकीन है, वो अपने शौक के लिए बड़ा खर्चा करता है और अच्छी सी अच्छी चीज उस शौक के ऊपर लगाता है। तो अगर आप मेल हैं, ठीक है जनाब, और आपको बालों को लंबा करने का, ना सिर्फ लंबा करने का बल्कि स्ट्रेट करने का शौक है, आपको अपने बालों को सीधा करने का और आपको अपने बालों को चमकदार बनाने का शौक है, तो आप मेरे बेटे को देखिए, शाहजहान को। ठीक है, वीडियोस बहुत सारी मेरी आईडी के ऊपर पड़ी हुई हैं, मेरे साथ उनकी बहुत सारी वीडियो हैं, और अभी जब हम टूर पर जाएंगे तो आप नई वीडियोस भी उसकी देखेंगे। तो अगर आपको वो बाल चाहिए ना जो मेरे बेटे के पास हैं, शाहजहान के पास, तो आपको केसन की जोड़ी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। वो हमारा ब्रांड एम्बेसडर है, जब भी वो हमारी केसन शॉप पर आता है ना, कभी कभी स्कूल से छुट्टियां हो तो उसे देखकर उसके इतने प्यारे बाल हैं, और केसन ऑयल और शैम्पू की वजह से हैं, इतने प्यारे बाल हैं कि मार्केट के बंदे ना उसे देखकर 8-10 बंदे तो उसी दिन ऑयल खरीद लेते हैं, उसके बालों को देखकर जनाब 8-9 बंदे उसी वक्त तेल खरीद लेते हैं। मैं अगर उसको लेकर किसी मार्ट के ऊपर जाऊं, किसी भी जनरल स्टोर के ऊपर जाऊं, या कभी किसी तंदूर वाले के पास रोटी लेने के रुक जाए, तो उसके बाल देखकर कहेंगे ये क्या, कौन सी चीज लगाता है, ये क्या लगाता है। ठीक है जनाब, यानी कि इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं मेरे बेटे के बालों को देखने के बाद, और अल्लाह गवाह है कि उसके बाल जब से वो पैदा हुआ है, कोई और ना ऑयल उसने इस्तेमाल किया होगा, ना कोई और शैम्पू इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमारे अपने घर की कंपनी है, तो वो एक जिंदा सबूत है कि खूबसूरत बाल क्या होते हैं। पहले उसके बाल बहुत बड़े थे, स्कूल पढ़ता है चूंकि, तो वो स्कूल वाले जो है मैनेजमेंट उनको बाल नहीं रखने देती, ये बड़ी मुश्किल से मैंने उनको मनाया कि भाई मेरा बेटा है और हमारी प्रोडक्ट है और यही हमारी शनाख्त है, और लोग इसको देखते हैं और रिजल्ट देखते हैं कि भाई वाकई ये तो बहुत प्यारा शैम्पू ऑयल है जो इतने बालों को प्यारा बनाता है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने अप्रूवल लेकर उसके थोड़े से बाल कटवाए हैं, वरना उसके पहले जो बड़े बाल थे वो इतने, मेरे ख्याल लड़कियों के ऐसे बाल प्यारे नहीं होंगे जैसे मेरे बेटे शाहजहान के हैं। तो अभी उसके बाल कुछ कटवाए हमने, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट इजाजत नहीं देती थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसके जब बाल देखेंगे ना, तो आप कहेंगे कि यार ये जो चीज भी लगाता है ना, चाहे वो जितने हजार की है ना, मुझे चाहिए। तो वो जहां पर भी मेरे साथ होता है, जहां पर भी उस दिन इस तरह हुआ कि घर के कुछ लोग आ रहे थे हमारे, तो चिंची वाला उसको ठहर गया, उस बच्चे के लिए उसको बिठा ले, साथ में बिठाया, तो उसने बड़े कम पैसे लिए, तो उसने कहा यार ये बच्चा मुझे इसके बाल इतने प्यारे लगे हैं कि मैंने कहा इसको मैं अपने साथ इसके साथ ले जाऊं। इतने मतलब है कि वो बालों के हवाले से नो डाउट, शक्ल सूरत माशाल्लाह मेरा बेटा है तो कैसे प्यारा नहीं होगा जी, प्यारा लगना तो सबका हक है। तो लेकिन उसकी बालों, उसकी जो खूबसूरती है ना मेरे बेटे की, वो बालों की है बेसिकली। बाल उसके, आप मेरी टिकटॉक आईडी के ऊपर जाएंगे, खलील ताबिश शवान को सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, और वो एक क्या कहते हैं, सच बोलता या मुंह बोलता सबूत है हमारे ऑयल और शैम्पू का, कि वो आपके बालों को कितना प्यारा बनाता है, यानी कि स्ट्रेट करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट, इस तरह तार की तरह आपको बाल स्ट्रेट हो जाएंगे केसन ऑयल और शैम्पू लगाने के बाद, तार जिस तरह होती है ना बिल्कुल उस तरीके से आपके स्ट्रेट हो जाएंगे। दूसरा, इतनी जबरदस्त किस्म की शाइन आ जाती है आपके बालों के ऊपर, जैसे कल मैं आपको बता रहा था सर के जैसे बाल गिर रहे होते हैं, ढलवान होती है, वहां पर शाइन नजर आएगी, और ये वजह है कंडीशनर की, क्योंकि हमारे ऑयल के अंदर भी कंडीशनर है, शैम्पू के अंदर तो आपने कंडीशनर सुना होगा, हमारा जो ऑयल है उसके अंदर भी हाइबिस्कस एज ए कंडीशनर शामिल किया गया है। हाइबिस्कस को अभी आप सर्च करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा कि ये तो बहुत ही जबरदस्त किस्म का बालों के लिए कंडीशनर है। तो जनाब बालों की सारी खूबसूरती जो है वो केसन, जी जनाब केसन ऑयल और शैम्पू के अंदर छुपी हुई है। बालों के शौकीन हैं तो आज ही खरीदिए केसन का हेयर ऑयल और केसन का शैम्पू, और अगर बाल प्यारे ना हो तो खाली बोतलें वापस कर दीजिएगा, हम आपको आपके पैसे वापस कर देंगे, सिंपल है जी। जी जनाब, और मैं आपको उन हरकतों को बता रहा था जिसकी वजह से बाल बेजान हो जाते हैं, तो ये कुछ खास हरकतें हैं, इन हरकतों से बाज आ जाए अगर आपको अपने बालों से प्यार है। लेकिन अगर आप इन हरकतों से बाज नहीं, यानी कि स्ट्रेटनर भी आप कहते हैं कि नहीं ये भी मैंने करना ही करना है, ठीक है जनाब, अच्छा जी बालों को कलर करना ही करना है, और इन चीजों से अगर आप बाज नहीं आते तो फिर एक काम कीजिए कि केसन, जी जनाब केसन का जो ऑयल है उसका इस्तेमाल कीजिए, आपके बेजान बाल जो है वो फिर से जानदार हो जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम खलील भाई, क्या हाल
0: है? अच्छे वैसे ही ठीक ठाक, वो इंतजार तो नहीं करवाया तो आपको सा?
1: नहीं नहीं नहीं, क्यों इंतजार, बेहतर गालियां सुन के साथ मालूमात मिल रही है सब बुजुर्ग।
0: अच्छा जी, तो मैं क्या बहुत सारे हरकतां दी वजह को बाल बेजान थी मैंने, तो तुसे मेरे ख्याल इन गाल को इत्तेफाक करे सो सना लई जेरे हरकतां इन खवातीन दे या लड़का लड़कियां दे के ख्याल है?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारे अपने हाथ को नुकसान थी ते दूजा गाल है जो सारी जी खुराक है ना सर दे बहुत तेज से गर्म थी जी जी वजह को बालों दे असर पोंदा पे ही। तो नंबर जरा है ना सर, ये जरा खास कर सारा पानी है ना सर जरा इस्तेमाल करेंगे पे, अगर इस पानी को सही मीठा पानी हो, सही पानी हो, ताकतवर पानी हो, ते ये जरा है ना ये भी सारी ते बुरे असरात करें उसकी वजह जी इस पानी को खराब करन भी नींद जरी सारे को वजह थे ये ऐसा खुद है उसकी वजह ये है कि सारे वेले साहब अस आप गाँव के बीच है सारे वेले ये लैटरीन वगैरह नहीं होंगी, ये लैटरीन जरा है ना बिल्कुल जितना जमीन के पानी जैसा लैटरीन के गंदे पानी को गिन गए जी वजह को सारे मीठे पानी के बड़े बुरे असरात आते पैन तलिया जरा ना इसी वजह को पानी मीठे जरा खारा थे पैन तो साकू चाहिए जो इना पानी को ये अल्लाह की नेमत है इन्हों को बचावना चाहिए और जेरे असा लैटरीन को तय ज्यादा गहराई च गिन गए उन्होंने वजह को प्रॉब्लम थी पैन पेट दीमारियां ना को पैन लेकिन ऑयल जरा है ना तो थोड़ी एक केसन जोड़ी है माशाला इन्होंने आके इना सारे प्रॉब्लम का जरा है ना निचोड़ जरा है ना इन दू ऑयल और इन्हों की क्योंकि 40 अज्जा जी जात पहुंच वन 13 17 जरा ऑयल तो मैं चाहता इन्हों की जितनी कमजोरिया इन पानी की कमी की वजह को या इसी वजह को इन्हों को ग्रोथ मिलती है शाइनिंग मिलती है इन्हों को जरा है ना जरा लू मुहे वालों को जरा है ना ये खत्म करें दे और नए बाल उगें दे और वही सब कुछ ज्यादा है जैसे हल्के या जितने स्याह नहीं थे तो नेचुरली अपने आबाव अजाद उत्ते लगे हुए उन्होंने बालों की जी थोड़ा भूरा पान या इस किस्म की जरा है ना अगर आलू जेरी शायद या गर्दो गुबार की वजह को तो ये शैम्पू अगर अगर लावे तू ऑयल लावे तो अगला आ जाए ये कोई या महंगी काली कलर की भी ले जाए हालांकि ये लुहान जो कमाल है ये उन्हें को ज्यादा ब्लैक करेंगे।
0: सही गल
1: बिल्कुल ब्लैक करेंगे जिनकी वजह को इंसान जो मजीद जरा बाकी सर्द जेरी जिल्द है इसको बड़ा मजबूत करेंगे खर्शी और इस किस्म की जेरी सारी को ऐसा जिन जरा कमजोर थी के थोड़े थोड़ी जरा है ना जिम्मे गर्द ढांधी पी होंगी कंघे उसको कंट्रोल करेंगे खोपड़ी को मजबूत करेंगे और सब को बेहतरीन ऑयल की खूबी है ना अगर जरा बच्चा अच्छे स्कूल पढ़ता पे तो उसके बोझ यादाश का कोर्सेज का बहुत हाई लेवल के कोर्स तो ये जरा सर के दर्द को कंट्रोल करेंगे जल्द सर का दर्द इस मारे कंट्रोल करेंगे इंसान के जरे बालों की तय है वो कमजोर होंगी जिनकी वजह को खून जरा ना ज्यादा ही करेंगे बनाने तो यह जहन को तरोताजा जी एक बादाम आदमी खाने थे ये आदमी है बड़े आदमी के मारे थे बच्चों के मारे सर के दर्द को खत्म करने का सर का दर्द है बहुत ज्यादा तो इस

0: पाकिस्तान, इन्होंने KNP लिखा हुआ है, ठीक है, द ओनली यूजर ऑफ KNP। अस्सलाम वालेकुम एंड हरदिल अजीज आरजे एंड मोहतरम उस्ताद जी, वेलकम टू द हमारा अपना फेवरेट शो। कैसे हैं आप, आपके फैमिली मेंबर्स एंड लिसनर्स, शो हमेशा माशाल्लाह वेरी फैंटास्टिक। एंड सोनिया आपी, कैसी हैं आप, और के यू हिना सिस्टर को वापस आने पर वेलकम, एंड कैसी हैं आप, बहुत मिस किया हिना आपको दुरे अदन ने। एंड मोमिना सहरेश सोनिया को दिल से अपने शो में वेलकम करते हैं, ये इतनी समझदार लड़की हैं, हमारे घर की हैं, हमारे शो की हैं, कि हर आने वाली बंदे फीमेल के ऊपर इनकी नजर होती है और उनको वेलकम भी कर रही होती है। तो नए आने वाली जो फीमेल्स हैं, सहरेश पंजीराई से, सोनिया को जो है ये अपने शो में वेलकम कर रहे हैं, साथ में हिना गुल को भी, महानूर है ना, निशा सिस्टर आप कहाँ गए मैं, एंड उस्ताद जी सुना है आप टूर पे जा रहे हैं, तो इट्स ओके बट उस्ताद जी हमें किसके सपुर्द करके जा रहे हैं अल्लाह के सपुर्द हैं जी, अल्लाह के हवाले, बस हमें भी साथ ले जाए, हमें आपका शो सुने बगैर जो है मक्खियां मारेंगे, यहाँ पर कहते हैं कि आपका शो सुने बगैर क्या हम मक्खियां मारेंगे, तो हमें साथ में ले जाएं। चलो जी आप भी पैकिंग करें फिर, ठीक है, सुबह रब्ता कर लीजिएगा, जगह बहुत ले जाने के लिए, दिल बड़ा हो, ठीक है जनाब, जगह बहुत हो जी। सलाम भाई, और कहते हैं कि सलाम भाई बेईमानी की वजह से जो है लोग दिल से उतर जाते हैं, यानी कि जो लोग बेईमान होते हैं ना, नाम उन्होंने नहीं लिखा, और जो बेईमानी वाली हरकत करते हैं वो हमारे दिल से उतर जाते हैं। इरशाद हुसैन तोंसा शरीफ वाले हमारे साथ है, खलील भाई शो बेस्ट है और हमेशा बेस्ट ही रहेगा, आज दिए खान में आया हुआ हूँ, ओ माय गॉड, इरशाद भाई तो जरूर केसन शॉप पर 5 बजे के बाद रब्ता करें ना, आपको गरम गरम मौसम में गरम गरम चाय पिलाएंगे क्योंकि गर्मी लोहे लोहे को काटता है ना, तो कोशिश करें कि 5 बजे के बाद जो है रब्ता कर लें और मुलाकात करके जाइएगा, आप इतने दूर से आए हुए हैं और इतने अरसे से हमारे यूजर भी हैं। लाला खलील गुस्सा खत्म करने वाला सीरप बनाओ, गर्मी की वजह से बहुत गुस्सा आता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो, के कैस लाकू झोक नौरंग से, शो मजा करेंदा पिया है, चाचा फतेह शेर को सलाम, राजा गफूर को सलाम, चाचे स्वारू को सलाम, सिराज शाहानी को भी सलाम, आदे पहन जी बहुत शुक्रिया। और उसके बाद है सलाम जी यार खलील साहब, आपकी कंपनी का हर प्रोडक्ट बहुत ही जबरदस्त है और सुटेबल है और री सुटेबल है, तमाम लिसनर्स को सलाम, शदीद गर्मी है और खुदा पाक खैर करे आप फैमिली को मरी टूर पे लेके जाएंगे, 17 को हम भी मरी आएंगे। अच्छा जी, हमारा मरी का स्टे वैसे एक दिन का है, एक नाइट और एक दिन का है, ज्यादातर जो है हमारी आउटिंग जो है वो नरान कगान शुकरान की तरफ है, मरी इस दफा हमने मरी को थक गए, अब मरी से ना, मरी जा के अब थक गए, बस माल रोडी है मरी के ऊपर, ठीक है, बाकी कश्मीर पॉइंट है या मरी पॉइंट है, लेकिन जो है मरी से हम तो थक गए, यकीन करें अब मरी में बस एक रात से ज्यादा नहीं रह सकता बंदा। अच्छा, आऊंगा जिंदगी रही तो दोबारा प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, शबीर शबरा को स्पेशल सलाम, नजर हसन किची काटगढ़ से हैं जना, कोशिश करें हम भी बराबर हो जाएं, आप भी हैं जी, मजा आ जाएगा, बड़ा भाई छोटा भाई एक साथ। अस्सलाम वालेकुम सर जी, सर माई सेल्फ के यू हिना गुल नूर हमारे साथ हैं जनाब, और कैसे आप, मैं बिल्कुल जी ठीक हूँ, एंड टॉपिक पर ये कहूंगी, जो लोग मेरी बात अच्छी तरह से सुने समझने के बाद भी इग्नोर कर देते हैं, बात सुनने के बाद भी इग्नोर कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी अपने दिल और दिमाग से दफा कर देते हूँ जी ना, उतार देते हूँ, उतरो जी थोड़ा स्टेशन आ गया है जी, इधर उतर जाओ बस। सर जी आपका सफर महफूज हो, खैरियत से जाएं और खैरियत से वापस आएं, मेरी सभी दुआएं आपके साथ हैं एंड फैमिली, एंड डेफिनेटली आई विल मिस यू, आई मिस यू टू डियर, आप सब लोगों को मिस करेंगे डेफिनेटली, और मेरा दिल करता है, मेरे पास वैसे एक सिस्टम मौजूद है ऑनलाइन का, और मैं कोशिश करूंगा कि अगर वहां से एक लाइव शो हो सकता है तो मैं आप लोगों के साथ जरूर करूंगा, ठीक है, मेरे पास ऑनलाइन स्ट्रीम होती है अपनी केसन रेडियो की, तो अगर ऐसा हुआ कि मुझे वहां पर कोई मौका मिल गया शो करने का, ठीक है जनाब, तो आप लोगों के साथ किसी दिन हो सकता है, इन 8 दिनों के अंदर किसी दिन आपको ज्वाइन कर लेंगे। सलाम टू ऑल स्वीट सिस्टर्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज, या अल्लाह हाफिज, तमाम सिस्टर्स को सलाम कह रही है। सलाम भाई, आज आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, मैं सहरिश फातमा पंज गिरई दिल लोग नहीं निकल सकते, शैम्पू और तेल जो है राजा गफूर से लेते हैं जनाब, ये पंज गिरई में सहरिश मौजूद हैं और ये कह रही है कि हम जो है वो सारे प्रोडक्ट आपके चाचू जो है राजा गफूर के पास से लेते हैं। सरश बहुत शुक्रिया। और लड़की आप हमारा लवली का फेस वॉश भी उनसे खरीदे ना, जाफरानी साबुन भी उनके पास होता है, और लवली फेस वॉश तो जरूर खरीदे। ये लड़कियों के लिए बनाया हमने स्पेशल, पूरे पंचगनई में आपको लड़कियों वाला फेस वॉश नहीं मिलेगा सिवाय केसन लवली फेस वॉश के। अच्छा जी, कंवारा आमिर अवान पाकिस्तानी, सलाम खलील भाई। वालेकुम सलाम, मैं आपको दुख समझ सकता हूँ शहजादे। हाँ जी, एंड दुरे अदन का शुक्रिया अदा कर रही है हिना गुल जो है, वो दुरे अदन का शुक्रिया अदा कर रही है, बोल रही है लव यू सिस्टर दुरे अदन। है जी, आज दुरे अदन ने अपने साथ कुछ और भी लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था मैं भूल गया, लाडली दुरे अदन। है जी, लाडली दुरे अदन। ये लड़कियां एक दूसरे को सलाम दे रही हैं, तो एक दूसरे के सलाम कबूल कीजिएगा। एंड केसन नेचुरल पाकिस्तान, हमेशा आपकी केयर का मुहाफिज, हमेशा आपकी केयर करने वाली कंपनी, चाहे वो मामला सेहत के हवाले से हो, दर्द का मामला हो, तो केसन शिफा दर्द को इस्तेमाल करें, फौरी तौर पर आपका पुराना से पुराना दर्द खत्म हो जाएगा। ठीक है जनाब, इसके अलावा अगर हाजमे का मसला है तो केसन हाजमा कंट्रोल सिरप इस्तेमाल करें, चाहे भूख का मामला है या फिर बद हजमी का मामला है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं केसन हाजमा कंट्रोल सिरप। और अगर मोटापा है तो केसन की वेट कम पेट कम हर्बल फकी का इस्तेमाल करें, हाथ पांव को गोरा करने के लिए केसन हैंड एंड फुट व्हाइटनिंग क्रीम, और स्किन को तरोताजा रखने के लिए, व्हाइट रखने के लिए केसन लवली फेस वॉश, केसन गो पिंपल फेस वॉश, केसन ग्लूटा व्हाइट फेस वॉश और केसन चारकोल फेस वॉश के इस्तेमाल के साथ साथ केसन जाफरानी साबुन, केसन मिल्की सोप वगैरह का इस्तेमाल कीजिए, और अपने आप लोगों को उन लोगों में जिंदा रखिए जिनको हम ढेर सारा प्यारा कहते हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए मुलाकात आपसे तकरीबन 10-8 दिन बाद होगी, तब तक के लिए अपनी दुआओं में ढेर सारा याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआओं में याद रखूंगा। और केसन को बिल्कुल भी नहीं बोलना है, क्योंकि केसन हर दिल की सदा है, शिफा है, और सबसे बढ़कर केसन जो है रब की अता है, तो रब की अता की हुई चीजों से मुंह बिल्कुल भी नहीं मोड़ना चाहिए। इस्तेमाल करें जनाब केसन, केसन के प्रोडक्ट, और उन लोगों के अंदर मौजूद रहें जिनको हम ढेर सारा प्यारा कहते हैं। एक लंबी सी ब्रेक के लिए इजाजत, हलाने के बाद
1: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: Your music, your request.
3: This is Radio Station.
4: Radio Aman.
5: आपका अपना रेडियो, रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
6: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू। आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780, व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।

डियर सामीन और डियर नाजरीन, हस्ब मामूल आज इतवार के दिन आपके साथ हम महवे कलाम हो रहे हैं, महवे गुफ्तगू हो रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आज हमेशा की तरह आज भी आप हमारे प्रोग्राम का इंतज़ार कर रहे होंगे और हम भी बड़ी चाहत और उम्मीद रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं और ये साथ दिल में ये जज्बा भी रखते हैं कि हमारे चाहने वाले, हमसे अकीदत रखने वाले, मोहब्बत रखने वाले हमेशा हमारे प्रोग्राम को सराहते हैं, पसंद करते हैं, सुनते हैं और फैमिली के साथ सुनते हैं। तो डियर सामेईन और डियर नाज़रीन, आज हमेशा की तरह एक छोटा सा टॉपिक जितना हमसे हो सकता है मसरूफ़ीत के इस दौर में, और गर्मी भी है और हालात भी ऐसे हैं आपको मालूम है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि छुट्टी ना हो और कोई ना कोई छोटा सा टॉपिक हो लेकिन आपके लिए लाएं ज़रूर। तो आज जो हमारे प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो है 500 रुपए और बेशुमार ज़रूरतें। 500 रुपए, इसको ज़रा और भी खूबसूरत मैं कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं है ताकि लोगों के लिए आसानी हो, क्योंकि फिर अगर मुश्किल टॉपिक रखूँगा तो फिर मसले बनते हैं ना। मतलब एक मज़दूर की फरियाद भी आप इसको कह सकते हैं, दुआ और रहमत भी कह सकते हैं, उम्मीद का दरवाज़ा भी कह सकते हैं इसको। तो ये उनवानात हो सकते हैं लेकिन मैंने आपके लिए ये रखा है कि उम्मीद का दरवाज़ा या एक मज़दूर की फरियाद या 500 रुपए और बेशुमार ज़रूरतें। तो इस हवाले से खूबसूरत टॉपिक आपके लिए हम लाए हैं।

या 500 रुपए और बेशुमार ज़रूरतें या उम्मीद का दरवाज़ा, तो मायूसी से दूर भागना कोई भी उनवान या एक मज़दूर की फरियाद या मज़दूर की दुआ का असर या अल्लाह के सब्र के बाद मेहरबानियों का बारिश, तो कोई भी उनवान दे सकते हैं। लेकिन अगर आप कहानी सुनेंगे तो जितने उनवानात मैंने गिने हैं, उम्मीद करता हूं कि वो सब इसी पर फिट आएंगे, सब इसी पर फिट आएंगे। तो डियर सामईन और डियर नाजरीन, आपकी तरफ फिर वंस अगेन हम आगाज़ करते हैं, आपकी तरफ आते हैं और इस प्रोग्राम की तरफ आते हैं।

मैसेज तो आए हैं फेसबुक पर भी, और जो हमारा 85 83 वाला जो है उस पर भी मैसेज आया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। गुला खान, इकराम भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आपकी कहानी सुन के ईमान ताज़ा हो जाता है। अल्लाह पाक हमें अपने दर से मांगने वाला बनाए और आपको जज़ाए खैर दे, आमीन। अल्लाह पाक आपको भी जज़ाए खैर दे। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहें, सदा आबाद रहें, हमारी भी दुआएं आपके साथ हैं। दो मैसेज किए हैं गुला साहब ने, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। और फेसबुक पे भी एक दो मैसेज आए हैं। एक्स खानी सर जी, पता नहीं कौन होगा, बहरहाल आज आपके मैसेजेस का और आपकी कॉल्स का और आपकी राय का और आपके सराहने का बहुत बहुत शुक्रिया।

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन। वेलकम टू रेडियो अमन 88.4। यू आर लिस्निंग रेडियो अमन नेटवर्क।
1: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू, सो स्टे ट्यून्ड।
0: 88.4 FM।
2: एक साफ सुथरा घर, चमकते बर्तन और ताजगी से भरपूर एहसास। हर घर की जरूरत और उस जरूरत का भरोसा है कमांडर। रोजमर्रा की जिद्दी दाव हो या बच्चों के खेल कूद से गंदे हुए कपड़े, कमांडर वॉशिंग पाउडर अपनी ताकतवर सफाई के साथ कपड़ों को बनाए ज्यादा साफ, ज्यादा रोशन और खुशबूदार। किचन में चिकनाई और मैल का मुकाबला अब मजीद आसान, कमांडर डिश वॉश। बर्तनों से चिकनाई को मोअस्सर तरीके से साफ करें और बर्तन को दे शानदार चमक, ताकि आपका किचन हमेशा साफ और खूबसूरत नजर आए। और जब बात हो जाती नगदाश्त की, तो कमांडर ब्यूटी सोप दे ताजगी, नरमी और दिलकश खुशबू का एहसास। हर नहाने के बाद खुद को महसूस करें पहले से ज्यादा तरोताजा और एतमाद। मियार सफाई और एतमाद का नाम कमांडर। कपड़ों की बेहतरीन सफाई के लिए कमांडर वॉशिंग पाउडर। बर्तनों की शानदार चमक के लिए कमांडर डिश वॉश। रोजाना ताजगी और नरमी के लिए कमांडर ब्यूटी सॉप। आज ही कमांडर प्रोडक्ट्स को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं और फर्क खुद महसूस करें। हर घर का एतमाद, हर दिन कमांडर की बेहतरीन सफाई। तो पता याद रखिए, रमजान मार्केट, दुकान नंबर 28, प्रोप्राइटर अजब खान के साथ इस नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, 0313 91 27 273।

Assalamualaikum टांग आसपास एरिया गोमला जी गोमला का इलाका गोमले वाल भी खबर से ली ऊपर रून चेरता चेरता मुझे यार वो कपी जीव से मैं यार वे ओवर एड से मैं यार वो बज निशान से मैं यार वो या बेद गरे मरी चिकू मेरी गुल इमाम में खानी चेरता मुझे यार वो टूल अस्सलामुअलैकुम चरंगा जी शियो ठीक ठाक की तबीयत मुर्शिदा जिंदगी शादा खुशियो मस्तियो जी बिल्कुल जदिता सुस्ता सु दोस्ता से आरजी तासु डीजे अखायो यानी आरजी तासिर योसरी ब्या तासु टूल पर खिदमत छी तासु ता हासिर

0: yazan.
1: Ay hay. Ay kurban mısın? Çok da 0304-992-5388 çok da kuru. Esselamu aleyküm.
2: Aleyküm selam. Kasir Volkan.
1: ठीक ठाक तभी ऐसी है ठीक है कौन है कितु है
2: उमर हयात
1: की में आ रहे ठीक है तभी ऐसी है ठीक है
2: माशाल्लाह तू स्वास्थ्य है खैरी
1: जबरदस्त जबरदस्त की में जिंदगी गुजरती पे पहली दफा सुन दे पहले यार जाने सुन दे
2: प्रोग्राम तो सुन दे रहा मैं तेरे प्रोग्राम सुन दे रहा मैं तेरी कंपनी में ना तो हूं सुने हूं तो मैं कंपनी में चल गया पर
1: हाँ तो मेरी कंपनी होने आई है तो मैं भी होने आया ना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा तो आपको मजा आना पिए जो मैं सराय किया लेना ये दसो चलो अच्छी गाल है कि तो आपको प्रोग्राम पसंद आया है नहीं तो प्रोग्राम पसंद भी ना आवे ना वती مہربانی صحیح مہربانی اچھا جی وقت آؤں لیکن ٹاپک دے بارے گال کروں ٹاپک دے گال کرے سو یا
2: نہیں ہاں
1: میں دسا ہی نہیں نا نہیں نا میں کتا دسا میں کہ لالا میں دا سی وقت میں دسے سا نا ہاں بالکل چنگا کیتا ہے بالکل اچھا अच्छा ए दसो अगर तो आपको हिक दीवार वास्ते मतलब तो आपको कितनी वेंदे पे हो तो आपको 1,00,000 रुपया कोई मिल वंजे हिक दीवार वास्ते ये बल्कि या कोई बंदा तो आपको ए आगी ने जो भाई ए 1,00,000 रुपया जेड़ा काम करना चाहंदे इन दे नाल करो वत केसी ते खर्च करो केसी गिन सो सबसे पहले अगर चलो 1,00,000 रुपया मैं दे हूँ देखो मैं तो इतना ही वस पर देना मैं तो तेरे को 1,00,000 रुपया दी गाल कर सकता हूँ डा लगता हूँ दी गाल तो मैं ना कर सकता वो तो नामुमकिन है 1,00,000 रुपया 1,00,000 रुपया कोई नहीं देना मैं तो बात 1,00,000 रुपया दी गाल 1,00,000 रुपया दी गाल की थी आए हाय दू शमसिया थी दू बैटरियां गिन सो कहने वास्ते गिन सो कहने वास्ते गिन सो कहने वास्ते गिन सो ठीक है बहुत सोने गाल बहुत मेहरबानी सही वसदे रहो खुश रहो ओके अल्लाह दी अमान सिफर 304-99-25-388 अच्छा जी दाता सो मैसेज है और अगला दा फिदा मरवत वाला संदर आप ले को कुर्बान दा सिदा ये वो खबर बतरता हो का ना देता सो ये उस सहार मैसेज रखला हूँ सिक्को में चमु डेरे बदे बदे खबर है करे कुर्बान दिस दा से जिद दिता नौकर नहीं अच्छा अब वाला खबर खुदा ची सहार 8 बजे मां प्रोग्राम ना ما خبر ادا چې دا عزیز چانو کار خونه یا ته بدا سه خبر ارته کوي نو دا خبر جان سره شیر ده صحیح ده چی او فرمای شو ما پروگرام څنګه پورا کیږي السلام علیکم وعلیکم
2: السلام کی حال
1: الحمدلله کون صحیح ته کی تو گال کرنے پاوې میں
2: څه قطار کو گال کرے ته
1: جاوید لاله ٹھیک وي خیر نه لري اج سارے مې سرای کی ورونه اند پین خیر ہووی हाँ जी सराय की जो अले सो ठीक है मैं तो सराय के अंदर आना लेकिन मसला ये है कि सजन सराय की आले जरे हिंद बहुत घाट आने
2: अच्छा
1: हाँ जी की में आले ठीक है वैसे अच्छा मैं कि अगर हिक हाँ हाँ 1,00,000 रुपया लाले को मिल बने तो क्या करे से होंगे
2: 1,00,000 रुपया
1: अच्छा कारोबार करे से
2: चल
1: चल अल्लाह ताला दे में अल्लाह ताला कारोबार ही नाल दे में ते अल्लाह बरकत पावे तेरे कारोबार बहुत मेहरबानी लाले ओके जी ओके ओके अल्लाह

0: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
1: Your music, your request.
2: This is Radio Station. Radio Aman.
3: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क
0: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
1: Your music, your request.
2: This is Radio Station. Radio Aman.
1: Your
4: station. जिंदगी में सुकून सेह से जुड़ा होता है और जब इलाज कुदरती हो तो यकीन खुद बहुत बढ़ जाता है। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का इलाज, सुकून का एहसास और शफा का भरोसा। इश्मा हर्बल ऑयल कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा एक ऐसा ऑयल जो बेशुमार बीमारियों में मुफीद है, जैसा कि मैदे की तेजबियत, जलन, बदहजमी, बोक की कमी, कब्ज, दिल और गुर्दों की तकलीफ, जोड़ों और पट्टों के दर्द, सर दर्द, मुंह के चाले, ये सब तकलीफ अब खत्म, क्योंकि हल है सिर्फ और सिर्फ इश्मा हर्बल ऑयल। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा ये शिफा बहश ऑयल जिस्म के अंदर और बाहर दोनों के लिए मुफीद। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का मुकम्मल इलाज, हर दर्द का आसान।

गला कर। मेरे चेहरे पर पहले दाने और दाग धब्बे थे। मैंने अपने चेहरे के लिए मुख्तलिफ किस्म की क्रीमें, एक्ने ट्यूब्स और मुख्तलिफ फार्मूले आजमाए, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने अरूसा शॉपिंग सेंटर से अश्मा एक्ने ट्यूब और अश्मा एक्ने सोप लिया। चंद दिन इस्तेमाल के बाद मेरा चेहरा गोरा और दाग धब्बों से मुकम्मल तौर पर साफ हो गया। अब मैं तमाम रेडियो लिसनर्स को ये पैगाम देना चाहती हूँ, अगर आपने भी अपने चेहरे पर मुख्तलिफ किस्म की क्रीमें या टोटके आजमाए हों और फिर भी कोई रिजल्ट न मिला हो, तो एक बार जरूर अश्मा एक्ने ट्यूब और अश्मा एक्ने सोप आजमाइए। अश्मा

ओके सी रुटीन शेन गुड क्रीम दे मुखा बरे कोले सी दिमिश फैन दिमिश रुणा सी द दे दे वजे परेशान दे सी बैजाना दिमिश पमख बला बला टाइम न दगुने दे सी बला मला मुदीन दगुने दे सी अधिस रसव कम सी सवर सरा नव कुस नोबेल कोले सी दिमो फैन दो दिमो मैन दो दिमो रुणो वो रेशा रुटीन शेन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान चिकम استعمال بالکل ماتے ویلے